अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे। और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

संसार की तरफ चलने वाले का कोई भी साथी नहीं होता, पर भगवान की तरफ चलने वाले के सब साथी हो जाते हैं।

ताले ताग धुमी ताग ताले ताग धुमी ताग धाला आम ताग धुमी ताग ताले के नेतु ताग नाग ताग धुमी ताग नाग नाग धुमी ताग नाग नाग धुमी ताग नाग नाग जाम तारी ता जग तारी ता जाने जाने को तारी ता को तारी के ने ताग धुमी तारी ता जग तारी ता जाने जाने को तारी ता को तारी के ने जाम तारी

उजा रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बे प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे अबे प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैक द बेस्ट उजाला रेडियो

अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

बहुत माशरी मोहम्मद रफी जिनके लिए मैं दीवाना बना आउट द फिल्म आओ प्यार करें एंड हैव नॉट द फिल्म कॉलेज गर्ल एंड डुएट फ्रॉम मोहम्मद रफी एंड लता जी.

अंतिम संस्कार होने वाला है पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

नक दिन झागी न धिनक तिन बा भैया, जब तक ये संसार न चाहे झूम झूम कर नाचे जा। झागी न धिनक तिन, झागी न धिनक तिन।

ये तो बता ओ चुपने वाले सामने आ, चुप चुप के मेरा जी न जला, सूरज से किरण बादल से पवन कब तलक छुपेगी ये तो बता।

आतिफ असलम की आवाज और स्टेशन उजाला रेडियो। इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए हम लोगों की वेबसाइट आप देखें ujala.nl। नेम ऑन्स ओवरऑल में और डाउनलोड कर ले उजाला के ऐप जो है।

तुझ में रब दिखता है, रूप कुमार राठौड़ की आवाज, रब ने बना दी जोड़ी फिल्म से गीत को आप सुने और उजाला रेडियो का प्रोग्राम है ये सुनने वालों। और आपके साथ हम भी सुन रहे हैं

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

सोनू निगम और अलका याग्निक, इन दोनों से आप गीत को सुने। फिल्म का नाम रेफ्यूजी। उजाला रेडियो पर इसी फिल्म से इन्हीं दोनों की आवाजों में एक और गीत पेश है।

मेरे हम सफर मेरे पास आ। अलका याग्निक एंड सोनू निगम, इन दोनों से गीत को आप सुने।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

0: to declare brazzafest.nl.
1: Now I don't want to go back. Fall in love with she. I come down to Trinidad and see a sweet lady.
0: Programma jo hai ga lamba chaura hai ga be aapke hum bataila. कौन कौन बेंचेस खेलेगा अल टॉप फॉर्मेसीज सब जबर जबर फॉर्मेसीज जो है नीदरलैंड में सब वहां पे रहेगा एक्ट अख्तर अलका एको ना मिसी हैगा ससेंदर अलमाल अल टॉप फॉर्मेसीज दी फरदीनन हम ऑफ सोन स्टेज पे स्टैंड प्लस ऑफ एस के मेन स्टेज पे वहां पे रहेगा दुई गो हाल दो एरियाज हाल इन जो हैगा बहुत लंबा चौड़ा बड़का स्टेज ओमन रहेगा भी और एक तवेदा हाल जोन हैगा वो रहेगा एक्ट फूड कोर्ट ओकर मतलब हैगा फूड लाउंज कोर्ट हमें चाहिए बोले के तू वहां पे लाउंज कर सकेगा तू वहां पे अपन खाना पीना खाइए और तू कुर्सी तफरा तोर खाती रहेगा वहां पे जहां पे तू रुस्तक से बैठ के इवन चेस खाई सकेगा अपन परिवार के साथ मैं चुफरीन डोंट मिस दिस हियर विल यू एक्ट बाय साइड विद द हेल फैमिली Het is natuurlijk een familiefestival. Dat houdt in dat iedereen welkom is. De kinderen zijn welkom. Maar ook Aji Aja, Nani Nana. En Mousi, Mousa, Pua, Poepa. Wie heb je allemaal nog meer? Ze zijn er allemaal. Sapkoi welkom, Heiga. Toen leken je gewoon. Ja, toch? Zaterdag 19 en zondag. Na 19 jaar, zaterdag 29 en zondag. 30 augustus. Take a look. Toen dikke jurte op een brassafest.nl. B-R-A-S-A fest.nl. Eén woord, brassafest. Toen dikke. Zij is er dus bij. Roshana Balgobind is erbij. Maar hij is er ook hoor. Hij is er zeker bij. All right, there we go.

live on stage. ब्रासफेस्ट पर आप सुनेंगे ये गीत मैं संजय जो था एक्सक्लूसिव के साथ. यस, मैं सन आई म्यूजिक फॉर्मेसी एक्सक्लूसिव लाइव ऑन स्टेज. वाओ, वत मोमेंट खदत वर्दे. हम तो के बलूफ करीला हिला देखो हम लोग यार, दनहा शहर हम लोग हिला देखो ही.

Live vanuit de Hoofdstad. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl. info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.

जला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हमारे प्यारे सुनने वालों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और आदाब। हमेशा की तरह जिनके घर पर कोई भी खुशियां, जन्मदिन, सालगिरह, विवाह, शादी हो, आप रिको हार्दिक से बधाई और तहे दिल से मुबारकबादी अर्ज किए जाते हैं। जो कोई बीमार या तो लाचार है तो उनके तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना, अल्लाह से दुआ है आप रिकी ताकत और तंदुरुस्ती के लिए। इतवार का शाम का प्रोग्राम पांच तारीख जुलाई का प्रोग्राम सोमवार 5 जुलाई करीबन 7 मिनट व्यतीत हो चुके हैं, 3:07 खुद में दखल माओ। यहां से आप लोग सुनेंगे प्रोग्राम वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा। मैं हूं सुभाष सिंह गोविंद और जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है वहां तक हम आप सभी को शाम का प्रोग्राम में स्वागत कर रहा हूं। वेलकम वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा। और हमारे प्यारे सुनने वालों, अगर आप कोई भी बैठक गाना सुनना चाहेंगे तो हमारा व्हाट्सएप का फोन का नंबर है 9 20 3 6 3 0 0 पर आप लोग मुझे ऐप कर सके हैं।

ये धन वालों की दुनिया है, निर्धन का भगवान। औसन से स्वर्गीय रामदेव चैत जी के वास में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जाए आमेर शहर में, जहां पर इस वक्त भाई मनोज मुंगार।

0: शाबाश चाहे बाजी लगाओ हमसे बरोबर ना होइए चाहे बाजी लगाओ। और इस तरह से राकेश यानकरन के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम। एंड अब की बार देखा जाए का पहला ऑन द एसल में देखा जाए वहां पर श्रीमान
1: ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला
0: श्रीमान गलेन प्रोग्राम को बैठ करके सुन रहे हैं।
1: ला ला ला ला ला ला ला ला।

शहबाज जिंदगी है क्या उड़ती हुई हवा यार। इस तरह से स्वर्गीय रामदेव चैतू जी की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, और इस गाना को मांग करने वाला था कपेल ऑन द आइसल का रहने वाला श्रीमान ग्लेन गंपत जी। एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम, और इस बार देखा जाए भैया धीरज सीताराम प्रोग्राम

शाबाश शाबाश बोले धोबिया तू मर जाइए। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, देवानंद गातो जी के आवाज में ये खूबसूरत सा गीत जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। एंड अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो एक और ऐसा गीत जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे बैठे गाना का प्रोग्राम है। अगर आप लोग हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहेंगे तो उजाला रेडियो का व्हाट्सएप का फोन का नंबर है 9 3 0 8 0 8 पर आप लोग मुझे ऐप कर सके हैं। तो चलिए द यंग टाइगर ऑफ बैठे गाना और हाजिर के विशाल हीरा के आवाज में, और इस गानों को मांग करने वाला है बेनी रामशरण।

अरे शाबाश शाबाश हमार रनिया रे हमार रनिया रे, तू बता दे सज्जे बतिया ऐसा सीधे यंग टाइगर ऑफ बैठ गाना विशाल हीरा के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। और देखा जय मेरे शहर में जहाँ पर इस वक्त माला मुंगार जी प्रोग्राम को बैठ करके सुने हैं, तो ये गाना तुम्हारे नाम

0: कोई जाए ना जाए। आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने खासकर के मोतीमाला भोला सिंह जी के आवाज में, एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं। और देखा जाए तो प्रोग्राम को भी आराम से बैठ करके सुने इसकी यासकी दाम में किशन रंजन शिवम और शिव और गाना जो मांग किए हैं और इस गाना पेश है आप तीनों के लिए इसकी दाम में।
1: कैसे जीरा
0: अरे भाई
1: सन्मान
0: आई बोई चलन दे

Salve, शाबाश शाबाश बालापन से अन्य तरह से सुजल उमराव के अवांश में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा जो आप लोग सुन रहे हैं। चलिए बात करेंगे मैं जहाँ पर श्रीमान राजन कुनकुन जी

शाबाश, देखो कैसी आई है बहार, झूम झूम के। और इस तरह से देवानंद गातो की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। और चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जाए होफदोर्म शहर में, जहां पर इस वक्त आनंद मंगरू प्रोग्राम को बैठ करके सुने। आई बो

शाबाश शाबाश वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठ गाना हंगामा जो आप लोग सुन रही आज इतवार सोंदाग 5 जुलाई का प्रोग्राम है। और चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो अब की बार गाना देखा जाए इस गाना को मांग करने वाला है देखा जाए तंत आनी दनहाग शहर में बैठकर

रे आजा रे वो सनम कृष्णम शेदी के अवांश में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं बैठ गाना हंगामा वैसे इसका प्रोग्राम और देखा जाए लाइव स्टेशन शहर में जहां पर इस वक्त सानू जीवी प्रोग्राम को बैठकर

बस जिसका प्रोग्राम बैठ गाना हंगामा जो आप लोग सुन रहे हैं, इतवार का शाम का प्रोग्राम आप लोग के नाम उजाला रेडियो का प्रोग्राम आमसराम शहर से हम बना रहे हैं आप सभी के लिए बेस्ट इंडिश का प्रोग्राम बैठ गाना हंगामा। और चलिए प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और देखा जाए अलमेरे में हमारे समधी भाई परिवार सौदागर प्रोग्राम को बढ़कर सुने और बनाए से को तीता तीता डोक्सा आई बोल।

वेल शाबाश शाबाश, और इस तरह से मोतीमाला भोला सिंह जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। और देखा जाए अलमेरे में टोनी इसरी भी प्रोग्राम को बैठ करके सुने हैं।

अरे यार किया मिला के और चले नहीं जाना, इस तरह से कृष्ण छेदी की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जाए अमसराम उस दौर में और वो भी भाई हैं गोपी प्रोग्राम को बैठ करके सुने तो ये गाना तुम्हारे नाम और भैया अर्जुन बिहारी।

शाबाश शाबाश। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने सुनील राम सुंदर जी के आवाज में। एंड अब की बार गाना को मांग करने वाला है भैया सुंद अब कहनत अपने भैया सत्तार के लिए। और ये गाना पेश है स्वर्गीय सनातन जी के आवाज में वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठ गाना हंगामा।

0: शाबाश शाबाश लड़गए रे लड़गए या इस तरह से स्वर्गीय सनातन जी के वंश में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे एंड यू आर उजाला रेडियो आई बॉय
1: ऑल द वाइनर्स कम फ्रंट राइट वाश्ती हाउ आर यू कॉल ऑल योर बेस्ट डांसर्स हियर राइट नाउ लेट मी डू दिस

तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने हैं, यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं हमारे प्यारे सुनने वालों, और बैठक गाना का प्रोग्राम जो आप लोग बैठ करके सुने हैं वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम।

शाबाश शाबाश पिया, चलो ना नगरिया हमारी अवसर से स्वर्गीय सनातन जी के आवास में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने। एंड अब की बार गाना कुमांकन वाली है, फैंस फोल्डर में देखा जाए एमी के लिए गाना पेश है।

शाबाश शाबाश ना थामो मोरी भैया, मैं तो जाऊंगी मदीना। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, और वो भी खास करके स्वर्गीय रामदेव चैतु जी के आवास में। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जाए सुतमेर में, जहां पर संता जी प्रोग्राम को बैठ कर सुने और इस गाने को मांग किया है।

शाबाश यार, मेरे दिल की घरे करे टिक टिक एंड गुड़िया तेरी याद में मारा। और इस तरह से द किंग ऑफ बैड गाना देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुन रहे थे, तो इस गाना को मांग करने वाली फैंस ऑफ ऑल ओवर के रहने वाली मीला कट्टू सिंह गाना को मांग किया है। एक बार फिर से प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला है द किंग ऑफ बैड गाना देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी के आवाज में, और ये गाना सुनेंगे। गुड़िया के चल ले जवनिया और गए ले अमुआ।

शबाश यार गोड़िया के चरले जवनिया एंड अमुआ बीने जाए। इस तरह से द किंग ऑफ बैड गाना देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। और हमारे प्यारे सुनने वालों, यहाँ तक आप लोग सुने प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम और आशा की आज का प्रोग्राम वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों को पसंद आए हुए होंगे। हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए, हमारा साथ देने के लिए आप सभी को धन्यवाद एंड शुक्रिया। आप लोग अपना इतवार का शाम और रात्रि मोई से बनाइए, मोई से बिताइए, मोई से रहिए, मोई से खाइए, मोई से पिए, जो भी करिए प्यार से करिए यार, जो भी कहना है आज करिए, कल का वादा ना करिए, कल तू ना देख लेना हम देख ले। अपने आप की जरूर से मोई से ख्याल कीजिए, आप लोग मोई से रहिए। खिदमत की आपका दोस्त सुबह शिव गोविंद, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते एंड खुदा हाफिज़।

और एक मंजिल राह दो, बोलो फिर प्यार न कैसे हो। फिल्म संजोग लता एंड मुकेश जी, उजाला रेडियो है ये।

दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ है। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ, ये बेमिसाल हो।

बार बार देखो ना ना हजार बार देखो, क्योंकि देखने की चीज है हमारा दिलरुबा मोहम्मद रफी साहब की आवाज और फिल्म का नाम चाइना टाउन। उजाला रेडियो पर

तैयार हो जा, तैयार हो जा, तैयार हो जा, सुन वालो, उजाला ला रहे हैं उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में. फूड म्यूजिक डांस शॉप मार्केट कल्चर फैमिली एंटरटेनमेंट टेस्ट बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स. तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले. ब्रासा फेस्ट जादा 29 en zondag 30 augustus. GIA Event Center Den Haag mee. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl.

में कब मैं जुबान से फिर जाओ, न जाने प्यार में कब मैं जुबान से फिर जाओ, मैं बन के आंसू खुद अपनी नज़र से गिर जाओ, खिजा के फूल पे आती कभी बहार नहीं मेरे नसीब में, ऐ मेरे दोस्त तेरा प्यार नहीं। द मैन विद द एवरग्रीन वॉइस, किशोर दा की आवाज़ आप अभी सुने हैं उजाला रेडियो के जरिए। मिले जुले संगीत में आज का इस एक घंटे का पैगाम में मैं आपको भी लोकल सिलेक्शन सुनाने वाला हूं। द इंडियन टेम्पटेशंस के साथ पर इस बार आप सुनेंगे विम डमरी साहब की आवाज में, मैंने चांद देखा है झिल मिलाती सितारों में, कोई फूल देखा है मुस्कुराती बहारों में, विम डमरी।

सुन लो बेकरारी का ये फसाना, जहां वालों मैंने चांद देखा है, झिल मिलाती सितारों में, कोई फूल देखा है मुस्कुराती बहारों में। द इंडियन टेम्पटेशंस के साथ पर विम डमरी की आवाज में आपने भी सुने हैं। यू आर के माध्यम से उजाला रेडियो का पैगाम है, मिले जुड़े संगीत आपकी खिदमत में अर्ज है। इस बार सुरों का बादशाह मोहम्मद रफी साहब।

बदतमीज कहो जानवर, मेरा दिल तो तेरे दिल पे फिदा हो गया। सुर का बादशाह रफी साहब की आवाज में आप अभी सुने हैं। इस बार द हार्ट ऑफ मिलियंस, द माइटी मुकेश।

मैं खुश नसीब हूँ मुझको किसी का प्यार मिला, बड़ा हसीन मेरे दिल का राजदार मिला। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, लता मंगेशकर और मुकेश चांद माथुर की आवाज़, यानी कि द हार्ट ऑफ मिलियंस, द माइटी मुकेश जी की आवाज़ आप अभी सुने हैं। उजाला रेडियो का पैगाम में मिले जुले संगीत हम आपको सुना रहे हैं और इस बार प्रोग्राम में है एक और लोकल सिलेक्शन। गायक है शहीद वाजिद हुसैन, ऐ मेरे दिले नादान।

शहीद वाजिद हुसैन की आवाज में। ऐ मेरे दिले नादान, तू गम से ना घबराना, एक दिन समझ लेगी दुनिया तेरा अफसाना। ऐ मेरे दिले नादान, तू गम से ना घबराना।

हमारे सभी श्रोताओं को एक बहुत ही शुभ दिन मुबारक दिन अर्ज किया जा रहे हैं। आप जिस हालात में भी हमको सुन रहे, बीमार, दुखित या तो लाचार है, आपकी खुशी के वास्ते भगवान से प्रार्थना और अल्लाह से दुआ है। और आप हर एक सुनने वालों के मनोरंजन के वास्ते हम स्टूडियो में हाजिर है लेकर कुछ मिले जुले संगीत, कुछ मिक्स मार्क सॉन्ग्स। उम्मीद है आप प्रोग्राम से भी एंजॉय कर रहे हैं।

उमंगों की निखार है, आंखों में है रोशनी। सुरो कबाचा मोहम्मद रफी साहब की आवाज। स्टेशन है यूआर उजाला रेडियो। फोन का नंबर 02-409-08-07। सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह में 10 बजे से लेकर दिन में 3 बजे तक आप डाल कर सकते हैं रेडियो के क्षेत्र पर हर एक कामर काज के वास्ते।

0: मैंने द क्वीन ऑफ इंडिया आशा भोसले और सुरो कबाचा रफी साहब की आवाज में फिल्म का नाम नीला आकाश तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है।
1: Ready, 4, 7.

Nachugao, Muskurao. ओ साइवानी साइवानी मोई मोई मैशे सुघर लड़की तो गुस्से को छोड़ो वादा ना तोड़ो ओहो लिफ मैशे विम डमड़ी की आवाज स्टेशन है यू आर उज्जला रेडियो साइवानी मोई मोई मैशे स्टे ट्यून्ड प्रोग्राम को आप सुनते रहना और सुनते ही जाना

तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। गुलाम नाना जगजीत सिंह, हाँ जगजीत सिंह की आवाज़ में गज़ल आप सुने, और गुलाम अली की आवाज़ में अब आप एक गज़ल को सुनेंगे। बहुत ही मशहूर गज़ल है जो बार बार आप ज़रूर सुन चुके होंगे। अगर इस प्रोग्राम से, जो गीत और गज़ल की दुनिया प्रोग्राम है, अगर आप इससे और मज़ा लेना चाहें तो आपको एक राय देता हूँ। वो ये है कि घर के चिराग जो है थोड़ा कम कर दे आप, रेडियो की आवाज़ जो है थोड़ा ज़ोर कर दे आप, और आंखें बंद करके और तब मज़ा लीजिए गीत और गज़ल की दुनिया उजाला रेडियो पर।

बहाना याद है गुलाम अली साहब से आप गजल को सुने और अब हिस्सा लेंगे फरीदा खानम जी पेश है शायद आप जाना चाहेंगे तो गुजारिश है इस गीत सुनने के लिए और इस गीत के सुनने के बाद आप फैसला कीजिए कि आप जाएंगे या यहीं पर सुनेंगे।

वाह वाह, फरीदा खानम से आप गज़ल को सुने, और अब इस गज़ल के सुनने के बाद आप बात मेरी तो इतनी मान ले कि आज जाने की जिद ना करो। अब हिस्सा लेंगे मेहदी हसन, उजाला रेडियो का प्रोग्राम गीत और गज़ल की दुनिया। इस प्रोग्राम को सजा रहे हैं इन लोगों की मीठी मीठी आवाज़, कलाकारों की मीठी मीठी आवाज़।

और मान लिया ना आप कि पंकज उधास के बिना ऐसा प्रोग्राम बनाना नामुमकिन है। और इस गीत और गज़ल की दुनिया प्रोग्राम में अब हिस्सा ले रही है चित्रा सिंह।

मुझे एक लतीफा याद आ गया है। इसी तरह एक गाना चल रहा था कहीं पे, तो एक शेर पे मुकर्रर की आवाज आई, तो वो शेर दोबारा पढ़ दिया गया। उसके बाद फिर मुकर्रर की आवाज आई, तो गाने वाले ने फिर दोबारा शेर पढ़ा। उसके बाद फिर मुकर्रर की आवाज आई, तो गाने वाले ने तीसरी दफा फिर पढ़ा, लेकिन फिर मुकर्रर की आवाज आई, तो गाने वाला बोलता है कि साहब मुझे अगला शेर भी पढ़ने दीजिए अभी। तो ऑडियंस में से आवाज आती है कि जब तक आप इसको सुर में नहीं पढ़ेंगे हम मुकर्रर ही बोलते रहेंगे।

हमारे और तुम्हारे प्यार में बस फर्क है इतना, इधर तो जल्दी है और उधर तो आहिस्ता आहिस्ता। जगजीत सिंह की आवाज में आप सुने। अब हिस्सा ले रही है आशा जी। उजाला रेडियो है ये।

उजाला रेडियो है, आपको स्वागत है फिर एक नया प्रोग्राम सुनने के लिए गीत और गजल की दुनिया। प्रोग्राम बनाया जा रहा है हर एक इतवार की रात हमारे जरिए, और इसमें बातें हम कम करते हैं और आपको सुनाते हैं अच्छे से अच्छे गीतों और गजलें। तो आज भी इत्मीनान से बैठ जाइए और लुफ्त उठाइए पहली गजल से, जो कि पेश है जगजीत सिंह की आवाज़ में।

बहुत खूबसूरत है आंखें तुम्हारी, इसमें डूब जाने के जी चाहता है। जगजीत सिंह की आवाज में आप सुनें।

din raad doua vomi. चंदनदास की आवाज में इस सुंदर गजल को आप सुने उजाला रेडियो का प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया में। और अब रेशमा, हाँ रेशमा हिस्सा ले रही है प्रोग्राम में।

इस प्रोग्राम से और लुफ्त उठाना चाहें आप तो घर के चिराग जो है कम कीजिए और रेडियो की आवाज़ और जोर।

मुस्कुरा कर मिला करो हमसे, कुछ कहा और कुछ सुना करो हमसे। जगजीत सिंह की आवाज़ में आप सुने और उजाला रेडियो है ये प्रोग्राम गीत और गज़ल की दुनिया। अब हबीब वाली मोहम्मद साहब से आप सुनेंगे।

आंख का नूर हूँ, ना किसी की दिल का करार हूँ। हबीब वली मोहम्मद की आवाज़ में आप सुने, और अगली गज़ल अशोक खोसला की आवाज़ में होंगे।

नैन जिनसे मिला मेरे दिल को चैन। मेहदी हसन की आवाज में गजल आप सुने, प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया, उजाला रेडियो है ये।

ये महक तेरे बदन की खुशबू आज भी याद है, हम आज भी नहीं भूले। अशोक खोसला की आवाज में इस गजल को आप सुने, और गीत और गजल की दुनिया के इस भाग का ये पहला भाग में अब एक आखिरी गजल आप सुनेंगे, लेकिन उदास मत होना, अभी कुछ ही देर में हम मिलते हैं लेकर के प्रोग्राम का दूसरा भाग।